भाई दम को खाचो घोसले मेरे को जोसने आफत दोसने सब कोसने छाप कोसले चने कोसने वजेब शरीर जो आवा बरखा न्याशो बिते बेमो बर बितने भाई